अनि सुन न म तिमीलाई धेरै माया गर्छु माया नगरे भोलि भेट्न त सक्छौ होला नि।